सावन तो वाकई बीत रहा है और जो जो काम आपको सावन में करने थे वो सब कर लीजिए और पतंगे उड़ाने का समय भी आ ही रहा है, बल्कि अभी से ही उड़नी शुरू हो गई हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लीज, मांझा जो है वो सही वाला इस्तेमाल कीजिएगा, चाइनीज मांझा मत इस्तेमाल कीजिएगा। पतंगे खूब उड़ाइए, रंग बिरंगा आसमान कर दीजिए, खूब सावन का मजा लीजिए। 15 अगस्त भी आ रही है और 15 अगस्त के दिन तो ये सब होता ही होता है, देशभक्ति भी होती है और ये सब भी होता है। तो देशभक्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो गाना भी आपको सुनवा देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने फरमाइश की है इस गाने की। ये गाना है फिल्म शहीद से और इस गाने को सुनना चाहा है नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय ढींगिया ने। तो आइए सुनते हैं उनकी पसंद का ये गाना।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स, जिसमें अब बारी है अशोक कुमार विद्यार्थी, मधु विद्यार्थी, दीपिका, हर्ष, हेमंत, निशा की फरमाइश पूरी होने का। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गाना, जो कि है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से। हालांकि आपने बताया नहीं था कि इस फिल्म का आपको कौन सा गाना सुनना है, पर मेरे हिसाब से आप टाइटल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने वही टाइटल सॉन्ग आपके लिए लगाया है। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं तो fmgoldairdelhi@gmail.com पर भेज सकते हैं अपनी फरमाइश।

0: बात तो सही है ना कि लोग यूं ही भूल जाते हैं। आप पुराने से पुराने आप किसी स्टार को उठा लीजिए, हमेशा उन्हें याद किया जाता है ऐसा नहीं होता है। बहुत कभी मौका पड़ता है तो लोग उन्हें याद कर लेते हैं, अदरवाइज भूल जाते हैं। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है, सभी किसी ना किसी को भूल ही जाते हैं। और अक्सर ये याददाश्त हमारी जो है वो थोड़ी छोटी ही होती है, तो इस याददाश्त को हम बहुत ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं अपने दिमाग में। लेकिन उस दिमाग की बत्ती को जलाइए और आज और अभी के मोमेंट में रहिए, तो यही बेस्ट रहता है। दिल का मेल बॉक्स सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जिसमें अब वक्त है आखिरी गाने का। पहले मैं बता देती हूं कि ये गाना किन लोगों ने सुनना चाहा था, सुशील पठानिया, चंद्रा पठानिया, अंजलि और सचिन, उनकी पसंद पर आपने जोशीला फिल्म का ये गाना सुना था किशोर कुमार की आवाज में। और अब चलते चलते जो गाना आप सुनने जा रहे हैं वो है डबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष, खुदाबख्श, खलीफा, दिनेश चौहान और बाबूराम जयपाल की पसंद का गाना है आप आए बाहर आए फिल्म से। और इस गाने का आप आनंद उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में।
1: कैसा कैसा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पिछले महीने की 20 तारीख से आरंभ सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। दोनों सदनों में आज निजी सदस्यों के विधायी प्रस्ताव भी चर्चा के लिए सूचीबद्ध हैं। झारखंड में 14वीं जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को आज संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में आज संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में

0: उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसिलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। वे हैदराबाद हाउस में आज विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसका संज्ञान लेने और बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टेन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। The monsoon session of Parliament will conclude today. The Rajya Sabha is scheduled to take up the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 today for consideration and passage. Both Houses of Parliament are also scheduled to take up private members' business today. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home, Nityanand Rai, moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. In news just in, Lok Sabha has been adjourned sine die. President Draupadi Murmu will confer the Sangeet Natak Academy Fellowships and Awards for 2024 and 2025 over 150 artists in a special investiture ceremony in New Delhi today. Union Minister of Culture Gajendra Singh Shekhawat and Minister of State for Culture Rao Inderjeet Singh will remain present on the occasion. Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today flagged off a Tiranga Yatra under the Har Ghar Tiranga campaign at Safdarjung Airport area in New Delhi. Talking to media, he expressed immense pride and happiness over the overwhelming public response to the initiative. He highlighted that people from all walks of life are coming together to celebrate the national tricolour, reflecting a strong spirit of unity and patriotism. Mr. Naidu said that the nation's interest must always remain the highest priority for everyone as the country moves forward together.
3: I am very happy and proud. Today, our ministry organized a Tiranga Yatra, and the way people across every state, village and community are participating in the Har Ghar Tiranga campaign is truly inspiring and important. To achieve our goal of a Viksit Bharat by 2047, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, we must move forward together with a sense of collective energy, and we must always remember that our country comes first.
2: In U.S., several states are issuing special proclamations to commemorate August 15 as India Day, celebrating India's independence, rich heritage and diversity, as well as the growing contributions of the Indian-American diaspora to the American fabric. Delaware is the latest state following New York, New Jersey.

हम सब सुकून के कुछ पल चाहते हैं और उन्हीं की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जो है चलते चले जाते हैं। अपने देश में कुदरत की गोद में बसी हूं तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां जाकर सुकून की ये तलाश खत्म हो सकती है, पर सोशल मीडिया और रील्स के जमाने में आप कहीं भी चले जाएं, थोड़ी बहुत भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन हाँ, आप कुछ ऐसे मोड़, ऐसे रास्ते तलाश सकते हैं जहां सिर्फ आप हो, कुदरत का साथ हो और तन्हाई। ऐसे कुछ पल आप उत्तराखंड के चकराता में भी बिता सकते हैं। तो आज की तस्वीर में चकराता की ही बातें करेंगे। 100.1 आकाशवाणी FM गोल्ड पर नीतू के साथ।

ऊंचे ऊंचे ओक के पेड़, लाल बुरांश के फूल, दूर दूर तक दिखती अचल खड़ी पहाड़ी चोटियां और सिर पर खुला नीला आसमान। दिल्ली में रहकर हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, पर पहाड़ों पर ये स्वर्ग जैसा दृश्य दिखाई दे जाता है। ऐसा ही है चकराता। यहाँ की खरम्बा चोटी 10,000 मीटर की ऊंचाई पर है और आपके एडवेंचर के शौक को पूरा करने के लिए परफेक्ट है। चकराता स्कीइंग के लिए भी मशहूर है, तो सर्दियों में अगर आप यहां जा रहे हैं बर्फबारी के समय, तो आप स्कीइंग का मजा उठा सकते हैं। बाकी तो आप किसी भी समय आराम से बैठकर गानों का मजा तो ले ही सकते हैं। तो

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: तस्वीर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM गोल्ड पर, और तस्वीर में बातें हो रही हैं चकराता की, जो कि एक पहाड़ी कस्बा है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स और पक्षी विशेषज्ञों के लिए एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ के जंगलों में जंगली मुर्गे, चित्तीदार हिरण और पैंथर जैसे कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। पक्षी देखने का आपको शौक है तो आप वहां देववन भी जा सकते हैं, जो कि चकराता से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। देववन में देवदार के घने पेड़ हैं और यहां से हिमालय की पर्वतमालाओं का साफ साफ नजारा दिखता है, अगर मौसम साफ हो तो। पक्षियों को पसंद करने वालों के लिए ही है रामताल हॉर्टिकल्चर गार्डन, जो चकराता मसूरी रोड पर है। घने जंगल के बीच बसाना ये एक हरा भरा सा स्वर्ग है, जहां अलग अलग पक्षियों की कूक चहचहाट सुनाई देती है। यहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब है, सेब का बागीचा है और इतना सुंदर नजारा यहाँ देखने को मिलता है कि अक्सर लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। कानासार के देवदार के विशाल पेड़ और शांत वातावरण, ये भी आपको पसंद आने वाला है। तो चकराता जाएं तो कानासार भी जरूर जाएं।

चक्राता की बातें हो रही हैं आज तस्वीर में, और आप चक्राता जाएं और टाइगर फॉल्स ना देखें तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये ना अपने आप में ही बेहद खूबसूरत झरना है और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा और आसान सा ट्रैक भी है। ये रास्ता भी बुरांश और ओक के पेड़ों से घिरा हुआ है। ये झरना घने जंगलों से घिरा है और भारत में अपनी तरह के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। इसका पानी जो है लगभग 312 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और जब ये नीचे गिरता है तो आपको पता ही है कि उस वक्त कैसा महसूस होता होगा। उस वक्त बस ऐसा लगता है कि इस पानी को देखते रहें, निहारते रहें, और जब ये छोटे से कुंड में गिरता है ना तो उस पानी का मजा भी आप ले सकते हैं, उस कुंड में आप नहा सकते हैं। और ये जगह ना उस वक्त ऐसी ही इतनी खूबसूरत लगती है कि बस लगता है वहीं बैठे रहें और उस पानी को देखते रहें, उस जगह को निहारते रहें, बिल्कुल वैसे ही।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

तस्वीर लेकर हाजिर है नीतू और आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। और तस्वीर में आज हम बातें कर रहे हैं चकराता की। चकराता से लगभग 40 किलोमीटर दूर हैं बुडर गुफाएं, जहां स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट की संरचनाएं हैं। चिलमिरी नेक से हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियां आप देख सकते हैं, सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य देखा जा सकता है। और हाँ, आप भी अगर स्लीप ट्रेवलिंग के लिए जा रहे हैं तो एक टेंट साथ में ले जाइए या वहां से ले लीजिएगा किराए पर, और खुले आसमान के तारों को रात भर निहारिए। नींद से भी ज्यादा उस वक्त सुकून मिलेगा आपको उस माहौल में। कैंपिंग ट्रैकिंग से अलग हटकर ये अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है जो सिर्फ वो महसूस कर सकते हैं जिन्हें रात में आसमान को में तारे निहारना पसंद है।

चक्राता से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लाखा मंडल मंदिर, जो कि यमुना नदी के किनारे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में ग्रेफाइट का बना शिवलिंग है, जो पानी डालने पर एकदम से चमकने लगता है। आपको महाभारत तो याद होगी, महाभारत की कुछ कुछ कहानियां वहां, उसमें आपको याद होगा कि लाक्षा गृह बनवाया था कौरवों ने पांडवों की हत्या के लिए। माना जाता है कि लाखा मंडल वही एक जगह है। हमारे देश में ना, आप किसी भी कोने में जाएंगे, आपको अलग अलग तरह की ढेर सारी कहानियां मिलेंगी, कुछ अलग। आप वहां जाने का ना मकसद ही ये होना चाहिए कि आप उन कहानियों को जाने जो कि हर कोने से, हर मोड़ से जुड़ी हुई है। तो चलिए, एक कहानी हम भी सुन

चक्राता में मुख्य रूप से जौनसारी समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लोक नृत्य, पारंपरिक वेशभूषा और रीति रिवाज हैं। स्थानीय मेलों और त्योहारों के दौरान जौनसारी संस्कृति की झलक और भी जीवंत रूप से देखने को मिलती है। यहाँ का स्थानीय भोजन भी अपनी सादगी और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। मंडवे की रोटी, कुल्थ की दाल, झिंगोरे की खीर और पहाड़ी मसालों से बने पारंपरिक व्यंजन, अगर आप इनका स्वाद लेना चाहते हैं तो लोकल ढाबों पर जाइएगा या फिर होम स्टे में भोजन कीजिएगा।

मार्च से जून और सितंबर से नवंबर चक्राता घूमने का बेस्ट टाइम है। अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो अपनी कार या गाड़ी हायर करके जा सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा दोनों देहरादून में है। वहां से आपको बस या टैक्सी लेकर चक्राता जाना होगा। रास्ते घुमावदार हैं और अगर आपको ऐसे रास्तों से गुजरने की आदत नहीं है या आपको माउंटेन सिकनेस हो जाती है तो बेहतर होगा कि इन रास्तों पर जाने से पहले आप जो भी खा रहे हैं वो हल्का फुल्का हो, तभी सफर जो है वो आराम से कटेगा। क्योंकि खाना तो आप वहां जाकर भी खा सकते हैं, लेकिन सफर का आराम से कटना ज्यादा जरूरी होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
1: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी की है। यह राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है, आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: เงิน
1: घर आंगन के इस शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप हमें सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस बस आने ही वाला है, बस एक दिन और बाकी है। और जब हम देश की बात करते हैं तो हमारा देश भारत अपनी विविधता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारत की मिट्टी में अनेक वीरों और महान विभूतियों ने जन्म लिया। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी हम सब एक हैं। और हिमालय से लेकर समुद्र तट तक की प्राकृतिक सुंदरता तो देखने लायक है। और हमारी संस्कृति, त्यौहार और परंपराएं भारत की पहचान है। भारत ने विज्ञान, शिक्षा, कला, खेल के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं और खास तौर पर तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। और हमें अपने देश की एकता, अखंडता और सम्मान को हमेशा बनाए रखना चाहिए। और हमें गर्व है कि हम हैं भारतीय, हमारा भारत महान है और हमेशा महान रहेगा।

अभी आप सुन रहे थे माँ लक्ष्मी अय्यर को, फिल्म थी फना। और अब बात कुछ करते हैं सावन के खुशनुमा मौसम के एहसास की, क्योंकि सावन का मौसम तो चल रहा है और सावन का महीना आते ही जैसे मौसम ही नहीं हमारा मन भी बदल जाता है। आसमान पर छाए काले बादल, मिट्टी से आती सौंधी सौंधी खुशबू, सावन अपने साथ एक अलग ही जादू लेकर आता है। कहते हैं ना, कुछ मौसम सिर्फ मौसम नहीं होते, सावन भी कुछ ऐसा ही है। बारिश की पहली बूंद पड़ते ही बचपन याद आ जाता है। कागज की नाव बनाकर पानी में बहाना, बारिश में भीगने के लिए बहाने ढूंढना और फिर माँ की डांट से बचने के लिए चुपके से कपड़े बदल लेना, है ना, मजा आता है ना। और सावन की बारिश में एक खास बात है, ये सिर्फ धरती को नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगो देती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ ली हो और पेड़ पौधे खिल उठते हैं, वातावरण में एक नई ताजगी भर जाती है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर कभी कभी जिंदगी में खुश रहने के लिए बड़ी वजहों की जरूरत नहीं होती। लेकिन सावन कहता है, कभी बारिश में खुद को महसूस कीजिए, मिट्टी की खुशबू को अपने भीतर उतरने दीजिए, पेड़ों की हरियाली को देखिए और अपने पुराने किसी खूबसूरत पल को फिर से याद कीजिए। बारिश की कुछ बूंदें, अदरक वाली चाय, पसंदीदा गीत अपना, खिड़की से दिखता भीगा हुआ आसमान और अपनों के साथ बिताया हुआ थोड़ा सा वक्त, बस यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है। तो इस सावन बारिश को सिर्फ छतरी के नीचे से मत देखिए, थोड़ा रुकिए, मुस्कुराइए, प्रकृति को महसूस कीजिए और उन लोगों को याद कीजिए जिनके साथ बारिश में कोई खूबसूरत याद आपकी जुड़ी हो। क्योंकि सावन सिर्फ आसमान से नहीं बरसता, बल्कि सावन तो यादों में बरसता है, रिश्तों में बरसता है और दिल के किसी कोने में छुपी खुशियों को फिर से जगा देता है। तो आइए सावन को यादगार बनाएं और कुछ पुरानी यादों को फिर से जिएं, कुछ नई यादें बनाएं और बारिश की हर बूंद के साथ जिंदगी को थोड़ा सा और भी ज्यादा खूबसूरत बनाएं। साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाज में सुनिए गीत, फिल्म है अनजाने।

और अब बात करते हैं कुछ महिला सशक्तिकरण के विकास की, यानी कि आज बात एक ऐसे विषय की जो सिर्फ महिलाओं के जीवन को नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी देना है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है।

यानी महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को अधिकार देना नहीं, बल्कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर भी देना है। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब एक महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती है तो वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति, सेना, व्यवसाय और कला, हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन सशक्तिकरण की असली शुरुआत तब होती है जब महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले और उन्हें अपने फैसले करने का खुद अधिकार प्राप्त हो। हमें समझना होगा कि महिलाओं का विकास पुरुषों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। एक सशक्त महिला केवल अपने लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए खास तौर से एक रास्ता बनाती है। इसीलिए बेटियों की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, समान अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सभी हमारे विकास की मजबूत नींव हैं। तो आइए हम एक ऐसा समाज बनाने का संकल्प लें जहां हर महिला कह सके कि मेरी पहचान मेरे सपनों से है, मेरी उड़ान अपनी है और मेरे फैसलों की आवाज मेरी अपनी है। याद रखिए, जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो परिवार आगे बढ़ता है, समाज आगे बढ़ता है और देश विकास की नई दिशा में आगे बढ़ता है। लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में गीत फिल्म है अनोखा रिश्ता।

दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत करते हैं हम। आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।

दोस्तों बात करते हैं कुछ स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की। कहते हैं जहां स्वच्छता होती है वहीं स्वास्थ्य और खुशहाली अपने आप चली आती है। स्वच्छता सिर्फ हमारे घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि ये हमारे आसपास के वातावरण, हमारी गलियों, सड़कों, नदियों और पूरे देश की जिम्मेदारी है। हमारा भारत सभी स्वस्थ और समृद्ध बन सकता है जब हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें, सार्वजनिक स्थानों को गंदा ना करें। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव की शुरुआत होती हैं। दोस्तों गंदगी केवल देखने में खराब नहीं लगती बल्कि ये कई बीमारियों को जन्म देती है। दूषित पानी जमा हुआ, कचरा, मच्छरों को बढ़ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरा बन सकता है। और स्वच्छता की शुरुआत आखिर कहां से हो, ये बात बहुत जरूरी है। यानी हमसे, हमारे घर से और हमारे परिवार से। बच्चों को बचपन से ही स्वच्छता की आदत सिखाएं, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं। सबसे जरूरी बात खुद की, यानी कि स्वच्छ रहें और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। याद रखिए सिर्फ सरकार के प्रयासों से देश स्वच्छ नहीं बन सकता, इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। और जब भारत स्वच्छ होगा तो बीमारियां कम होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तो आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि गंदगी नहीं करेंगे ना करने देंगे, स्वच्छता को अपनी आदत बनाएंगे और अपने भारत को स्वच्छ, स्वस्थ और उसमें अपना योगदान देंगे। क्योंकि स्वच्छ भारत जो है वो सिर्फ एक सपना नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। और स्वस्थ भारत हम सभी के उज्ज्वल भविष्य की पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और कविता कृष्णामूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में गीत, फिल्म थी परदेस। और अब बात करते हैं कुछ फिर से सावन की। जी हाँ, सावन के झूलने की, यानी कि सावन में झूले झूलने का शारीरिक और मानसिक महत्व दोनों है, क्योंकि सावन का महीना आते ही मन में एक अलग सी उमंग जाग उठती है। चारों ओर हरियाली, बारिश की फुहारे, मिट्टी की सौंधी खुशबू और पेड़ों पर झूले सावन की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। हमारे लोक जीवन में सावन और झूलों का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि झूला झूलना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद उतना ही साबित हो सकता है जितना कि झूलने के लिए। हम सब झूले में बैठकर आगे पीछे झूलते तो हैं, लेकिन शरीर को अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए लगातार हल्की हल्की गतिविधि करनी पड़ती है। इससे शरीर का संतुलन, समन्वय और मांसपेशियों की सक्रियता बेहतर हो सकती है, खासकर जैसे कि पैरों, पेट पर और कमर की मांसपेशियां हल्के तौर पर सक्रिय रहती हैं। आज बात करते हैं इसके मानसिक महत्व की। झूले के आगे पीछे होते ही गति जो है मन को एक तरह से लय और शांति देती है। झूले का अनुभव तनाव और थकान को कम करने में मदद कर सकता है। कुछ देर के लिए हम रोजमर्रा की भागदौड़ और चिंताओं से दूर होकर वर्तमान पल का आनंद लेते हैं, और यही वजह है कि सावन के झूले हमारी यादों और भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। बचपन में दोस्तों के साथ झूला झूलना, सहेलियों के साथ सावन के गीत गाना, परिवार के साथ हंसी मजाक करना और भी पल मन में खुशियां भर देते हैं। तो क्यों ना कुछ पल मोबाइल और भागदौड़ से दूर होकर झूले की उस पुरानी प्यारी लय का आनंद लिया जाए, क्योंकि सावन का झूला सिर्फ ऊपर नीचे नहीं जाता बल्कि हमें बचपन की यादों, रिश्तों की गर्माहट और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों तक भी हमें लेके जाता है। तो चलिए चलते हैं, मिलके सावन का झूला झूलते हैं।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गीत, फिल्म थी लम्हे। और अब बात करते हैं कुछ युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी ऊंची इमारतों, बड़ी अर्थव्यवस्था या आधुनिक तकनीक से नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है उसका युवा वर्ग। युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, उम्मीद और भविष्य का आधार है। जिस देश में युवा शिक्षित, जागरूक, मेहनती और जिम्मेदार होते हैं, उस देश को विकास की सह पर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है। हमारे युवा शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, कला और सामाजिक सेवा जैसे हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहे हैं। आज का युवा सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। स्टार्टअप से लेकर डिजिटल तकनीक तक युवा नए विचारों को नई दिशा दे रहे हैं। गांव से निकलकर छोटे छोटे सपनों को बड़े बदलाव में बदल रहे हैं। लेकिन युवा शक्ति का मतलब केवल उम्र से युवा होना नहीं है। युवा होना एक सोच है, कुछ नया करने की सोच, मुश्किलों से लड़ने का साहस और देश के लिए योगदान देने का जज्बा। हर युवा अगर ये संकल्प ले कि वे अपने ज्ञान और हुनर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज और देश के बेहतरी के लिए करेगा तो बदलाव निश्चित है। तो आइए आज हम अपने युवाओं पर विश्वास करें और सही शिक्षा, अवसर और मार्गदर्शन दें और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक शिक्षा दें। क्योंकि जब युवा सपने देखते हैं तो देश नई मंजिलें तय करता है, और जब युवा देश के लिए सोचते हैं तो राष्ट्र का भविष्य मजबूत होता है। और याद रखिए, युवा शक्ति केवल देश का वर्तमान नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।

दोस्तों, बात करते हैं जल संरक्षण भविष्य के भारत की नींव की। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे पास पीने के लिए साफ पानी ही ना बचे तो क्या होगा? हमारे खेत, हमारे जंगल, हमारे शहर और हमारा जीवन सब कुछ पानी पर निर्भर है। भारत में आज बढ़ती आबादी, तेजी से होते हुए शहरीकरण और बदलते मौसम के कारण जल संकट एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। हम अपने घर की इसकी शुरुआत कर सकते हैं। नल खुला छोड़ने की आदत बदलें, ब्रश करते समय नल बंद रखें, जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल ना करें और घर में पानी के लीकेज हो तो तुरंत ठीक कराएं और बारिश के पानी को जमा करने के लिए वर्षा जल जरूर अपनाएं। और किसान भाई भी खेतों के लिए ऐसी सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कम पानी से अधिक फसल तैयार हो सके। शहरों में तालाबों, झीलों और पारंपरिक जल स्रोतों से खास तौर पर बचाना ही बेहद जरूरी है। याद रखिए, पानी बचाने का मतलब सिर्फ आज की जरूरत पूरी करना नहीं, इसका अर्थ है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य तैयार करना। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि हमारे अकेले पानी बचाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन एक एक बूंद मिलकर ही सागर बनती है और अगर हर परिवार रोज थोड़ा सा पानी बचाए तो करोड़ों लीटर पानी बचाया जा सकता है।

दोस्तों कहते हैं जल तो कल है और कल तो जल है, यानी जल तो है जीवन और जल सुरक्षित है तो भारत का भविष्य सुरक्षित है। आइए मिलकर पानी बचाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा खुशहाल और जल संपन्न भारत बनाएं। और इसी शुभकामना के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। सिमरन कौर को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी घर आंगन शो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए

0: रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
1: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
2: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की सांस्कृतिक पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगी, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर उद्यताओं ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्व कला तक अनेक दक्षताओं को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
0: नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned sine die. The monsoon session, which began on the 20th of last month, concluded today after 19 sittings spread over 25 days. The House witnessed discussions on a wide range of legislative and national issues. Several important bills, including the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, The Tribunal's Reforms Bill

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे 50 और 60 के दशक की जानी मानी खूबसूरत बेहतरीन अभिनेत्री वैजयंती माला की। जी हाँ, आज वैजयंती माला अपना 93वां जन्मदिन मना रही हैं। आज वे पूरी 93 साल की हो चुकी हैं और उनकी पहचान एक शानदार अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर के तौर पर है। वैजयंती माला के चाहने वालों को उनके दोनों ही अंदाज खूब पसंद आते हैं। वैजयंती माला ने तमिल फिल्मों से करियर शुरू करने के बाद बहार फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपने सफर का आगाज किया था और उसके बाद कई फिल्में उन्होंने दी, कई सुपरहिट फिल्मों का वे हिस्सा रही। वैजयंती माला भले ही 100 साल की उम्र की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन वो अभी भी अपने नृत्य से लोगों का दिल जीतने का दम रखती हैं। हम चाहेंगे कि वे 100 साल पूरे करें और ऐसे ही हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और उन्हें आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। तो चलिए, कलाकार बेमिसाल की हम शुरुआत करते हैं इस सुपरहिट गीत के साथ, जो जाहिर सी बात है पिक्चराइज्ड है वैजयंती माला पर ही, और फिल्म है संगम। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, कलाकार भी मिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला की। आज वे अपना जन्मदिन मना रही हैं। 13 अगस्त 1933 को एक तमिल परिवार में जन्मी वैजयंती माला ने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। आज वैजयंती माला 93 साल की हो गई हैं। उनकी पहचान एक अभिनेत्री और क्लासिकल डांसर के तौर पर है। हमें तो उनके दोनों ही अंदाज बेहद पसंद आते हैं। आपको बता दें कि वैजयंती के लिए सिनेमा का माहौल कोई नया नहीं था, क्योंकि उनकी मां वसुंधरा देवी खुद भी एक अभिनेत्री थी जो 1940 के दशक में तमिल सिनेमा का एक जाना माना नाम थी। वैजयंती माला को उनके परिवार ने 4 साल की उम्र से ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते एक समय के बाद वैजयंती कथक, कुचिपुड़ी और उड़िया जैसे कई डांस परफॉर्मेंस में महारत हासिल कर चुकी थी। उन्होंने तमिल फिल्मों से करियर शुरू करने के बाद बाहर फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपने सफर का आगाज किया और ये फिल्म 1951 में रिलीज हुई थी और इसके बाद तो उन्हें लड़की, नागिन, संगम, सितारा, जश्न, ताज, अनजान, मधुमति, लीडर, नया दौर, ज्वेल थीफ, देवदास, अम्रपाली, साधना, छोटी सी मुलाकात, सूरज और न जाने कितनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री वैजयंती माला की। वैजयंती माला भले ही 100 साल की उम्र की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन वो अभी भी अपने डांस से, अपने नृत्य से लोगों का दिल जीतने का दम रखती हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 7 साल की उम्र में 1940 में वेटिकन सिटी में भी एक खूबसूरत प्रस्तुति दी थी। वैजयंती माला ने तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद बाहर फिल्म से हिंदी सिनेमा में अपने सफर की उन्होंने शुरुआत की। साल 1955 में आई फिल्म देवदास में उन्होंने चंद्रमुखी का रोल करने के बाद हम सबके दिलों में एक खास जगह बना ली थी और उसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिलने लगी, एक से बढ़कर एक उन्हें रोल मिलने लगे और जिस भी फिल्म में वे नजर आई उस फिल्म में उनके रोल की खूब तारीफें हुई। आपको बता दें 1955 की फिल्म देवदास उनके लिए बेहद खास रही क्योंकि इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था। और उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए तो गंगा जमुना, संगम, मधुमति, लीडर, नया दौर, ज्वेल थीफ, देवदास, आम्रपाली, साधना, छोटी सी मुलाकात, सूरज, नागिन, नजराना, आशा, फूलों की सेज, पैगाम, संघर्ष, सितारों के आगे, साथ ही दुनिया इशारा, न जाने कितनी ही फिल्में हैं जिनमें वे आई और छा गई। तो चलिए, फिलहाल हमने फिल्म देवदास की बात की है तो इसी फिल्म का गीत हम आप सभी तक पहुंचाते हैं। आइए सुनते हैं लता की आवाज में ये गीत।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

कलाकार बेमिसाल के जरिए आज हम बात कर रहे हैं खूबसूरत अभिनेत्री वैजयंती माला जी की। आज वे अपना 93वां जन्मदिन मना रही हैं। जी हाँ, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1933 में। और आपको बता दें कि वे कई सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही थी और ख़ास तौर से उनकी जोड़ी राज कपूर, दिलीप कुमार और बहुत से ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ उनकी जोड़ी को खासा पसंद किया गया था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें दिलीप कुमार की, तो दिलीप कुमार के साथ उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें नया दौर, लीडर, देवदास जैसी फिल्में शामिल हैं। तो चलिए, हम दिलीप और उनकी जोड़ी की बात कर रहे हैं तो उन पर पिक्चराइज्ड ये सुपरहिट गीत आप तक पहुंचाते हैं। फिल्म नया दौर से ये गीत आप सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली

0: लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz। मैं रुचि का आपके साथ, और आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री वैजयंती माला की। उनकी कुछ सुपरहिट फिल्मों की बात की जाए तो गंगा जमुना, संगम, मधुमती, लीडर, नया दौर, ज्वेल थीफ, देवदास, आम्रपाली, साधना, छोटी सी मुलाकात, सूरज, नागिन, नजराना, आशा, फूलों की सेज, पैगाम, संघर्ष, साथी,

0: वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां।

সুমিতা ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী।

मेरिंगिफ 97.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथी एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आशक संवाद 1947 श्रवण माह की प्रतिपत्ता तिथि तदनुसार सन 2026 अगस्त महीने की दिनांक 13 और दिन है गुरुवार। श्रोतव अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यांगफो, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा और श्री अशोक बर्मन, मोनपा में उत्कोषक श्री थुतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उत्कोषिका कार्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

बीडीएमएफ 197 दशमलव 2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions, and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions, and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए हम काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुग ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगा

0: लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: ऑपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकट्टा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना

0: जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमरीकी ताने बाने में भारतीय

रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। डीजी श्रोता अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद हिंदी भक्ति गीत। निजी श्रोताओं पेश है कार्यक्रम वंदना।

0: श्रोताओ, इस वक्त आप चंद भक्ति गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनी या अगला भक्ति गीत।
1: माताओं, बहनों और सज्जनों, आज हम श्री राम जी के त्याग का प्रसंग शुरू करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि पहले आप सब मेरे साथ इस महामंत्र का उच्चारण कर मन पवित्र कर लें।

फूल सी सुकुमारी जनक नंदिनी, जिसने अपने पति धर्म का पालन करने के लिए क्या क्या नहीं सहा।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या?
2: ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादा जी को लेके।
1: हाँ यार, उम्र हो जाती है तो रनर तो लगता ही है, पर बैंकिंग में नहीं।
2: वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं, डिफरेंटली एबल्ड है और आप बैंक नहीं जा सकते, तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर।
1: सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है अलग अलग प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। अलग अलग प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक कुमार सानू के स्वर में चंद बंगला आधुनिक गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद बंगला आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गायक कुमार सानू के स्वर में चंद बंगला आधुनिक गीत। इसी के साथ ही अलग अलग प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला मंच। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए वन स्टॉप सेंटर तवंग के एडवोकेट सोनम जंगमो केस वर्कर से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर हुए भेंटवार्ता। भेंट करता है दर्शी ड्रामा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारे साप्ताहिक महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला मंच में आप सभी श्रोताओं का मैं स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हमारे साथ आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में उपस्थित है वन स्टॉप सेंटर तवांग के केस वर्कर एडवोकेट सोनम सांगू जी। तो सोनम जी, आपका सबसे पहले हमारे आज के इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूं।
2: आपको भी नमस्कार
1: जी। तो श्रोताओं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारे साथ आज के विशेष मेहमान है एडवोकेट सोनम सांगू, तो जाहिर सी बात है कि आज हम अधिनियमों पर ही चर्चा करेंगे और कार्यक्रम का नाम ही कार्यक्रम महिला मंच है, तो इसमें हम महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए कई सारे अधिनियमों पर बात करेंगे। तो सनम जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 या घरेलू हिंसा, आप हमें बताइए कि घरेलू हिंसा किसे कहते हैं और घरेलू हिंसा कितने तरह के होते हैं?
2: जी शुक्रिया। घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस हम उसे कहते हैं जो हिंसा घर के चार दीवारों के अंदर होता है ना। एक छत के नीचे में जितने भी आदमी रहते हैं, जैसे कि एक महिला एक दूसरे घर में शादी करके जाते हैं तो उसका पति का परिवार हो गया, या फिर वो अपने घर में जो अपने माँ बाप भाई बहन या फिर जॉइंट फैमिली है तो अंकल आंटी जिसके साथ भी रहते हैं, तो मतलब एक घर के अंदर में जो हिंसा होता है उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं या घरेलू हिंसा कहते हैं। और घरेलू हिंसा के हमारे मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में 5 types दिया गया है, 5 types। तो पहला है फिजिकल एब्यूज, दूसरा है इमोशनल एब्यूज, तीसरा है सोशल एब्यूज, चौथा है सेक्सुअल एब्यूज और लास्ट इकोनॉमिक एब्यूज। तो मैं इसको थोड़ा आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगी। फिजिकल एब्यूज हम किसे कहते हैं, जैसे नाम से हम

0: मेरे को पता चल रहा है कि मतलब फिजिकल मतलब आपको मारना पीटना उसको हम फिजिकल एब्यूज कहते हैं और वो दिखाई भी देता है अगर किसी के साथ फिजिकल एब्यूज हुआ है तो। मगर जब हम इमोशनल एब्यूज की बात करते हैं तो वो किसी को दिखाई नहीं देता है, अंदर ही अंदर विक्टिम को खाया जाता है ना, तो वो दूसरे टाइप होता है। फिर आता है आपका सोशल एब्यूज, मतलब मेनलैंड इंडिया में कई कई जगह पर जो बहुत ही अंदर रिमोट एरिया है वहाँ पर अभी तक भी ऐसे औरतें हैं जिसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है और किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, तो वो सोशल एब्यूज के अंदर आता है। उसके बाद आता है आपका सेक्सुअल एब्यूज ना, तो हमारे इंडिया में मैरिटल रेप को अभी तक क्राइम नहीं माना जाता है। तो अगर कोई हस्बैंड को किसी वाइफ को मैरिटल रेप करता है तो हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर में उसको सेक्सुअल एब्यूज के अंदर में बुक कर सकते हैं। वहां से आता है आपका इकोनॉमिक एब्यूज। इकोनॉमिक एब्यूज मतलब जिसे मैंने आपको कहा मेनलैंड इंडिया में कई सारी जगह है जहाँ पर अभी तक औरतों को अपना बैंक अकाउंट भी खोलने नहीं दिया गया है
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: इस तरह का मतलब सिचुएशंस है और उनको खर्चा पानी नहीं दिया जाता है, तो ये सब इकोनॉमिक एब्यूज के अंदर में आता है।
1: तो डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू हिंसा में केवल शारीरिक हिंसा ही नहीं आते हैं बल्कि और भी बहुत सारे हिंसाएं आते हैं, जैसे यौन हिंसा, भावनात्मक हिंसा या आर्थिक हिंसा या कई तरह के और भी हिंसाएं हो सकते हैं। तो अगर किसी के साथ अगर ऐसी घटना या ऐसी हिंसा होते हैं कहाँ जाकर शिकायत दर्ज करनी चाहिए?
0: जी हमारे अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी के साथ भी इस टाइप के डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो अपने अपने जो पास के पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट में वन स्टॉप सेंटर तवंग है वहाँ जाके वो डायरेक्टली आके अपना कंप्लेन कर सकते हैं। और जब वो कंप्लेन करते हैं तो हम जब वो वन स्टॉप सेंटर में आते हैं तो फर्स्ट हम उनका डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंगली, उसके बाद में हम उनको जेएमएफसी कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं, वहाँ जाके डीएलएसए की मदद से उनको आगे की कार्रवाइयाँ किया जाता है।
1: क्योंकि हमारे समाज में लगभग शारीरिक रूप से जो हिंसा हुआ है उसी को ही सच माना जाता है, लेकिन अब सरकार ने हमें सुविधाएं दे रखी हैं कि किसी भी तरह के हिंसा आपके साथ अगर होते हैं तो आप आकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो अगर किसी महिला के साथ ऐसी ही घटना घटती है, अगर वो आकर आपके पास शिकायत दर्ज भी करते हैं तो सरकार की ओर से और उस पीड़ित महिला को क्या क्या रिलीफ मिलते हैं?
0: जी जैसे मैंने आपको बताया जब हम अपने डीआईआर को फॉरवर्ड करते हैं जेएमएफसी कोर्ट में तो वहाँ पर जो भी जो लीगल एड क्लिनिक में एडवोकेट है वो उनको मदद करते हैं। तो उसके बाद में अकॉर्डिंगली मतलब उनका जो कितना सीवियर उनके साथ में वायलेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग में उनको रिलीफ दिया जाता है। तो फर्स्ट आपको रिलीफ में आता है प्रोटेक्शन ऑर्डर, जिसमें जो औरतें होते हैं विक्टिम होते हैं उनके जो एक्यूज होते हैं या रेस्पोंडेंट होते हैं उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन ऑर्डर पास किया जाता है। तो वहाँ पर उनको वो फिजिकल वायलेंस या किसी भी तरह का जो फिजिकल वायलेंस या इकोनॉमिक वायलेंस जो भी उसको रोक दिया जाता है। फिर सेकेंड आता है आपका रेसिडेंस ऑर्डर। रेसिडेंस ऑर्डर में क्या होता है आपका एक महिला को जब वो घर से निकाल दिया जाता है उसका हस्बैंड या किसी भी
1: कोई सदस्य
0: घर के सदस्य के द्वारा तो वो रेसिडेंस ऑर्डर की मांग कर सकता है।
1: अच्छा।
0: फिर आता है आपका मॉनिटर रिलीफ, वहाँ पर अगर उनके साथ में मतलब मंथली मेंटेनेंस नहीं देता है या फिर इकोनॉमिक वायलेंस हो रहा है तो मेंटेनेंस के लिए वो प्रे कर सकती है। फिर कस्टडी ऑर्डर तो मेनली बच्चों के लिए होता है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ या कोई भी जैसे किसी भी महिला के बच्चों को लेने के लिए करता है तो वो कस्टडी ऑर्डर के लिए मांग कर सकता है। और लास्ट है आपका कंपनसेशन ऑर्डर, तो इस एक्ट के अंदर में पीड़ित महिलाओं को कंपनसेशन भी दिया जाता है जो कि होता है फिजिकल वायलेंस या इमोशनल वायलेंस के लिए दिया जाता है।
1: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट या हम जिसे पोश एक्ट 2013 भी कहते हैं, तो इसके बारे में मैं और हमारे श्रोताएं जानना चाहेंगे कि पोश एक्ट किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या जो ऑफिस में काम करते हैं वही महिलाएं आते हैं या फिर घर में जो काम करते हैं या घर में काम ही नहीं बल्कि किसी के घर में रहते भी है कोई, जब कोई शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर में आते हैं तो उनके घर गांव में होते हैं, तो किसी रिश्तेदार के घर पर अगर वो रहते हैं तो उनके साथ भी अगर कुछ ऐसा जो हैरेसमेंट होते हैं तो क्या उन पर भी ये लागू होते हैं?
0: जी शुक्रिया। फर्स्ट मैं पोश एक्ट का फुल फॉर्म आपको बताना चाहूंगी, POSH, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पर भले ही वर्क प्लेस सिर्फ लिखा है, ये एक्ट जो है जिसे आपने मुझे पूछा डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है कि नहीं, बिल्कुल ये एक्ट जो है डोमेस्टिक हेल्प के लिए लागू होता है। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं,

0: या फिर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं या किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनके लिए ये लागू होता है।
1: जैसे कि किसी के साथ ऐसे हिंसा या कोई हैरेसमेंट होता है तो अगर वो किसी को शिकायत दर्ज करना चाहे भी तो थोड़ी सी खुलकर नहीं बोल सकते हैं, तो अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो किस तरह से करेंगे?
0: तो इस एक्ट के अंदर में ये भी कहा गया है कि किसी भी ऑफिसेस में ऑफिसेस या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पर 10 से ज्यादा एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर मैंडेटरी है कि एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना है। तो उस कमेटी में आपका चार मेंबर होना है और उस चार में से मैक्सिमम नंबर जो है मतलब 50% से ज्यादा मेंबर जो होना है विमेन होना है, जो विमेन रिलेटेड वर्क करता है जो एनजीओस में है उनको वहां पर अपॉइंट करना है, और जो जो इंटरनल कमेटी में है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में है उनका नाम अपने अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड में उनको डिस्प्ले करना है ताकि जो एम्प्लॉयज है उनको ये नॉलेज हो कि अगर उनके साथ में अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो तो वो किसके पास जाके कंप्लेंट करना है। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ऑफिसेस में होता है तो उनका उनका जो कंप्लेंट है फर्स्ट आपको आईसी मतलब इंटरनल कमेटी में जाके लॉन्च करना पड़ता है। फर्स्ट ये इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हुआ करता था लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इन 2016 इसको सिर्फ इंटरनल कमेटी के नाम से जाना जाता है।
1: अच्छा।
0: क्योंकि ये कमेटी जो है सिर्फ कंप्लेंट तक ही सीमित नहीं है, इनका पावर इससे ज्यादा है, इसलिए अभी इनको हम इंटरनल कमेटी के नाम से जानते हैं। और अगर 10 से कम वाले जो ऑफिसेस है वो अगर कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक वाइज में आपका लोकल कमेटी होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो उनको अप्रोच करके वो अपने कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं।
1: जी जी सुनम जी, क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं, हमारे यहाँ पर ऐसी चीजें बहुत ही कम ना के बराबर होते हैं, फिर भी इन सब चीजों के बारे में जानकारी होना हमारे कर्तव्य है। और हर ऑफिस में चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो वहाँ पर एक इंटरनल कमिटी होना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर ऐसी हिंसा होते हैं हैरेसमेंट होते हैं तो वो सीधे जाकर अपनी शिकायत कर सके। और मैंने ये भी सुना कि शी बुक्स पोर्टल नामक एक वेबसाइट है, तो इस बारे में आप हमें बताएं।
0: आजकल ऐसा होता है कि लोग कंप्लेन करने से बाहर आने से उनको शाई फील होता है, घबराहट फील होता है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पोर्टल लॉन्च किया है ना, एक पोर्टल लॉन्च किया है, तो वहाँ में जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रहे अपने ऑफिसेस में वो डायरेक्टली ऑनलाइन भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। shebox.wcd.gov.in यहाँ पर जाके वो डायरेक्टली अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके अंदर से जो भी उनका कंसर्न आईसीसी है या एलसी है, लोकल कमेटी है या इंटरनल कमेटी है, वो अपने कंप्लेन को टिकअप कर लेंगे।
1: जी जी, मतलब अगर किसी के साथ ऐसी हैरेसमेंट होते हैं तो वो बिना किसी दूसरों को बताए ही अपने लैपटॉप से या अपने ही कंप्यूटर से वो इस पोर्टल को टाइप करते हुए अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं ना। और सुनम जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसे कहते हैं और यह अधिनियम कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए लागू होते हैं?
0: जी, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो है बच्चों के लिए, ये एक एक्ट है जो 18 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्ट बनाया गया है। आपने निर्भया केस तो जरूर सुना होगा, जो घटना हुआ था निर्भया केस, तो उसमें आपको जानकारी होगा कि वहाँ पे एक एक्यूज जो है वो जुवेनाइल था जिसके होते उस सीवियर पनिशमेंट इतना नहीं मिला था, जिसकी वजह से भी इस एक्ट को थोड़ा सा अमेंडमेंट करना पड़ा। तो उस केस के बाद से अब जो बच्चे हैं जो 16 टू 18 इयर्स के बच्चे हैं अगर वो हीनस क्राइम करता है, हीनस क्राइम मतलब जो 7 इयर्स से ज्यादा पनिशमेंट होता है जिसमें, अगर वो ऐसा क्राइम करता है तो उनको भी एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जैसे आपने हमको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में पूछा है तो नॉर्मली ये बच्चों के लिए ही है, बच्चों के लिए है। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में दो तरह का बच्चा आता है, एक है आपका CNCP और दूसरा है CCL। CNCP मतलब चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ।
1: तो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ या फिर चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इन दोनों में फर्क क्या है और अगर किसी बच्चे से अपराध हो जाते हैं तो उन पर कार्रवाई कौन करेंगे?
0: CNCP जैसे कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है और CCL मतलब चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ मतलब जो 18 से नीचे बच्चे हैं वो अगर कोई क्राइम करता है तो उनको कहाँ पर हम नॉर्मल कोर्ट में तो उनको हम लेकर नहीं जाएंगे, तो उनको हम लोग डील करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो इस एक्ट के अंदर में ही दिया गया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो चाइल्ड फ्रेंडली होता है, नॉर्मल कोर्ट की तरह नहीं होता है। तो उसमें

0: तीन मेंबर होता है, एक होता है प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट जो हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जेएमएफसी में होता है यहाँ का या सर होता है वही प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होता है। फिर जो दो बाकी मेंबर है वो किसी भी एनजीओ का मेंबर हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है या फिर सोशल वर्कर हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा क्राइम करता है तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर में देखा जाता है। चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन जो बच्चे होते हैं उनको जो है केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होते हैं, जो डिस्टिट्यूट होते हैं जिसका माँ बाप ने उसको अबेंडन कर दिया होते हुए भी, ऐसे तरह के बच्चे ना, तो उनको इसी एक्ट के अंदर में CWC जैसे GGB दिया है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करके होता है जहाँ पर एक चेयरपर्सन और तीन अदर मेंबर होते हैं वो लोग उनको देखभाल करते हैं। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका माँ बाप होते हुए भी उसको नहीं देख रहा है, नहीं देख पा रहा है, या फिर कोई बच्चा का आता पता नहीं है ना, और जो कोई बहुत ही पुअर फैमिली से या फिर ऐसे बिलोंग करता है तो उनको CWC टेक केयर करते हैं
1: जी। और जब हम बच्चों से संबंधित चर्चा कर ही रहे हैं तो मैं साथ में ये भी जानूंगी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 या शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए आप
0: जी। राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें क्या होता है आपका जो 6 to 14 ईयर्स का बच्चा होता है उसको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देने का बात करता है ये एक्ट। किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो उसको हम एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, और किसी भी स्कूल गवर्नमेंट रन स्कूल है वहाँ पर बच्चों को हम फीस नहीं ले सकते, किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होना है। और जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उनके लिए भी ये होता है इस एक्ट के अंदर में कि उनका जो 25% होता है 24% जो होता है वो
1: छूट मिलेंगे
0: जी, मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब रिजर्व होना चाहिए। तो मेनली ये एक्ट यही कहता है कि जो 6 to 14 ईयर्स है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना ही है, भले ही अगर वो अपने एज से ज्यादा, किसी किसी का ऐसा होता है कि वो एज चला जाता है फिर वो उस क्लास में फिट नहीं होता है, तो वो कंसर्न स्कूल का ड्यूटी होता है कि उसको वो स्कूल में भर्ती कराना है, चाइल्ड स्पेशल नीड की तरह उनको ट्रीट करके उनको पढ़ाना है, उनके दूसरे जो बच्चे होते हैं उसके साथ में बराबर उनको लाना उनका ड्यूटी होता है।
1: जैसे कि अभी बाल मजदूर हमारे यहाँ पर तो बहुत ही कम होते हैं, आजकल हर कोई समझदार हो चुके हैं कि सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाहर से लाकर भी किसी के होटलों में या घरों में काम कराते हैं, हालांकि उनके माँ पिताजी की रजामंदी के साथ ही कराते हैं, फिर भी ऐसे बच्चे अगर 6 से 14 साल के बीच के निकले तो उन पर क्या ये कानून लागू है या नहीं
0: जी। ये जो है 6 to 14 ईयर्स जो है वो सभी बच्चों के लिए, इंडिया के सभी बच्चों के लिए उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, और अगर कोई व्यक्ति 6 या 14 वर्ष के बच्चों को काम पर रखता है तो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर उसको बुक किया जाएगा, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई काम लगाता है तो वो चाइल्ड लेबर के अंदर में आता है, और चाइल्ड लेबर भी एक बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, तो हम बच्चों को अपने घर में भी काम नहीं लगा सकते हैं। किसी के बच्चे को अगर हम पढ़ाने लेके आते हैं तो उसको हम काम नहीं लगा सकते हैं, उनको पढ़ाना ही है 14 साल तक तो हाँ। फिर अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, किसी भी अगर वो लोग दुकान चला रहा है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, वो उसका मम्मी पापा बिजनेसमैन है तो वहाँ पर वो थोड़ा उनकी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी स्कूल आवर्स में करना मना है, उनके वेकेशन में हो गया फिर अपने स्कूल छुट्टी होने के बाद आधा घंटा एक घंटा के लिए वो थोड़ा मदद कर सकते हैं, वो भी बहुत ही लाइट काम, हैवी काम उनको नहीं दे सकते हैं। और जो एडोलसेंट बच्चे होते हैं जो मतलब 19 इयर्स ना, जो 14 to 19 होते हैं, उनको हम हल्का हल्का अपने जो घर का दुकान हो गया जैसे मैंने आपको बताया ना, उन सब चीजों में वो मदद कर सकते हैं, बाकी 14 से नीचे 6 वर्ष तक हम किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का काम में जो चाइल्ड लेबर जैसे दिखता है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में मतलब किस किस एरिया में हम काम नहीं करा सकते वो लिस्ट भी दिया गया है, जैसे आपका फैक्ट्री वर्क हो गया ना, तो फैक्ट्रीज वगैरह में बच्चों को हम काम में नहीं लगा सकते हैं।
1: जैसे कि हमने कार्यक्रम में पहले चर्चा किए थे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड ही कहते हैं, तो मैंने अक्सर ऐसे लोगों को कई बार देखा है कि घर के बड़े या फिर कोई रिश्तेदार किसी भी छोटे बच्चे को शराब की दुकान में शराब खरीदने के लिए भेज देते हैं, या फिर किसी भी दुकान में तंबाकू से बने चीजों को खरीदने के लिए भेज देते हैं, तो उस समय क्या है ना, वो बच्चे के जो बहुत ही नाजुक समय होते हैं जीवन के, तो ये कहाँ तक सही है इस तरह के काम बच्चों को लगाना, और आप उनको क्या कहना चाहेंगे आप एक एडवोकेट होने के नाते
0: जी। ये फिर आपका अलग कानून है जिसको हम

0: कुत्ता एक्ट कहते हैं।
1: अच्छा,
0: देखिए जब एक बच्चे को तंबाकू या फिर शराब कोई खरीदने बेचता है तो ऑब्वियसली बच्चा खुद का तो नहीं होगा, उनके खुद का कोई बड़ा ही उनको खरीदने बेचता है, तो इससे क्या होता है, ये तो मतलब कानूनी अपराध है। उसके ऊपर में अगर हम बच्चों को अगर ऐसे कुछ चीज खरीदने बेचते हैं तो उनको अगर इस चीज का ज्ञान नहीं होने से भी ज्ञान आ जाता है, मतलब इसे सिगरेट कहते हैं या फिर इसे दारू कहते हैं, वो ये जानने का मन हो जाता है, फिर वो ट्राई करते हैं, ऐसे करके बच्चों को भी मतलब बहुत खराब असर पड़ता है,
1: गलत रास्ते पे चलने लग
0: गलत रास्ते में चले जाते हैं। तो इसलिए जो घर के बड़े हैं वो खुद के लिए नहीं सोच के बच्चों के लिए सोच के एटलीस्ट बच्चों को ये सब चीज खरीदने नहीं बेचना चाहिए, और कानूनी अपराध भी है ये। और जो बेचता है दुकानदार उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई छोटा बच्चा कोई तंबाकू या फिर कोई शराब खरीदते आता है तो उनको वो नहीं बेचना चाहिए।
1: जी जी जी, तो हमारे आज के इस कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं। तो आज आपने हमारे आकाशवाणी तवांग के स्टूडियो में अपने कीमती समय निकाल कर आए और हमें कई सारे महिलाएं एवं बच्चों से जुड़े हुए अधिनियमों के बारे में जानकारी दी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वन स्टॉप सेंटर तवंग के एडवोकेट सुनम संगमू केस वर्कर से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, किशोर न्याय अधिनियम 2015 और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विषय पर हुए भेंट वार्ता। भेंट करते थे दोषी ड्रामा। इसी के साथ ही कार्यक्रम महिला मंच अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान में एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुने फिल्म रॉय से, अरिजीत सिंह और अतिथि सिंह शर्मा के स्वरों में। गीत कुमार के है व संगीत अमाल मालिक का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए अरिजीत सिंह और एसिस कौर के स्वरों में फिल्म कपूर एंड सन्स से। इस गीत के गीतकार है डॉक्टर देवेंद्र काफिर तथा संगीतकार तनिष्क बागची।

श्रोता, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, इर्शिद कमल द्वारा शब्द रचना पर फिल्म तमाशा से गायक मोहित चौहान के स्वर में, और इस गीत को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म सनम रे से, अरमान मालिक पलक मुज्जल के स्वरों में। मनोज यादव के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है अमाल मालिक ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म हॉलीडे से। गायक अरिजीत सिंह की आवाज में इर्शाद कमल के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म क्वीन से यह गीत अमित त्रिवेदी और अरिजीत सिंह के आवाजों में। अन्विता दत्त के लिखे इस गीत को संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से, गायक आतिफ असलम के स्वर में। इरशद कमल द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है गायक विशाल मिश्रा की आवाज में फिल्म नोटबुक से। अक्षय त्रिपाठी द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है गौरव वशवानी ने।

श्रोताओं, फिल्म नोटबुक के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए पंडित उल्लास बपत से संतूर वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं पंडित वैभव नागेशकर ने। लीजिए पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित उल्लास बपत से संतूर वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे पंडित वैभव नागेश।

करने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी है, अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। अरुणाचल प्रदेश से डोमिन कालबाग को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और रोमी तक को उस्ताद बिस्मिल्लाह युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी मतभेदों का समाधान आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीकों से करने का किया आह्वान। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई के नोंगताओं में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र के कार्य की प्रगति का किया निरीक्षण। आज छामलिंग से तवांग मठ होते हुए ऐतिहासिक तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा बाइक सह साइकिल यात्रा का किया गया आयोजन। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्या बाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पुष्टि की है कि अफगानिस्तान अगले महीने से दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का करेगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार देश की प्रदर्शन कलाओं, संगीत नाट्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा है कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा है कि संगीत की अनेक प्रणालियां हैं, नृत्य की कई शैलियां हैं और लोक रंगमंच के अनगिनत रूप हैं।
1: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है। जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो, वस्तु कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्यों के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
0: राष्ट्रपति ने कहा है कि कलाकार देश भर में समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश की लोक कलाओं के विलुप्त होते के खतरे पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कलाओं का दस्तावेजीकरण करना और उन्हें जीवंत रखने के लिए विशेष प्रयास करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने वरिष्ठ कलाकारों से अगली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का आग्रह भी किया।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: अरुणाचल प्रदेश से डोमिन कालबाग को स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत तथा

0: पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रूमी ताकी को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के लिए उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों राज्य के बीच का संबंध सीमाओं से कहीं आगे है। पीढ़ियों से दोनों राज्यों के लोग प्रेम और आपसी सम्मान के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के वर्षों में दोनों राज्य ने संवाद और मैत्रीपूर्ण भावना के माध्यम से सीमा से जुड़े अधिकांश मतभेदों का समाधान किया है। अब केवल 52 गांव शेष है और दोनों राज्य की सरकारें इसी भावना के साथ बातचीत जारी रखते हुए सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाने का प्रयास करेंगे। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि मतभेदों का समाधान हमेशा संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की है कि मतभेदों को असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत संबंधों पर ही हावी न होने दें। इस बीच बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी से पश्चिमी हिस्सों की ओर जाने वाले प्रवेश द्वार को वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। मिसिंग समुदाय के संगठन TMP के समर्थकों द्वारा नाकेबंदी किए जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। सोमवार को असम अरुणाचल सीमा के पास हिमे गांव में हुई हिंसक घटना के विरोध में आर्थिक नाकेबंदी की गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में नामताओं में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विहार और 108 फुट ऊंचा भगवान बुद्ध की प्रतिमा आध्यात्मिक विकास तथा ताई खामती संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने नामसा स्थित महाबोधि लॉर्ड बुद्धा कॉलेज में 100 बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्माणाधीन महाबोधि मॉन्क्स हॉस्टल की प्रगति की समीक्षा भी की। आज अरुणाचल प्रदेश के चामलिंग से तवांग मठ से होते हुए ऐतिहासिक तवांग युद्ध स्मारक तक तिरंगा बाइक एवं साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के पहले तवांग टाउनशिप में तवांग मठ से चांगबू तक तीनों प्रमुख बाजारों और आसपास के कॉलोनियों सहित आम लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। लोगों ने एकजुट होकर अपने आसपास के क्षेत्रों को सफाई और सौहार्दपूर्ण सौंदर्य तरीके से योगदान बना दिया है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुई मानसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा में 19 बैठकें आयोजित की गई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई है।
1: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट्स पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज समाज सुधारक अहिल्या बाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि अहिल्या बाई होलकर ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण से लेकर तीर्थ स्थलों के विकास तक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार में अद्वितीय योगदान दिया। गृह मंत्री ने कहा है कि महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने के माध्यम से अहिल्या बाई होलकर ने जनकल्याण, न्याय और सुशासन का आदर्श स्थापित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिल्या बाई होलकर ने जन केंद्रित शासन, अदम्य साहस और कुशल प्रशासन का एक असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री सिंह ने कहा है कि उन्होंने समाज के वंचित और जनजाति समुदायों की आजीविका और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि उनका जीवन न्याय, सुशासन, महिला सशक्तिकरण, जन कल्याण और भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की प्रेरणादायक गाथा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

Yang lain dua bahasa, sih, sih, jauh, kalau aku dulu udah.

见月儿，一点琢磨寂寞多寂寞，哎呀告诉我真不俗女这个破账真的到了年龄了。

Tene

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम शेदन लेरिम के अंतर्गत आनी केसंग और साथियों से लम्मा छिपा। 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल ख्रिमेतेंग के 8वीं कक्षा की छात्र तेंजिन शरफ से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा द स्कूल बॉय। आज शाम के 7:11 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक और अनेक। इसके अंतर्गत आप सुनिएगा गायक सुखविंदर सिंह और अन्य गायक कलाकारों द्वारा फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी, फिल्म ताल से सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक, फिल्म रईस से सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और साथी, फिल्म सुल्तान से सुखविंदर सिंह और सदफ फरीदी, फिल्म संजू से सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल, और फिल्म लगान से सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, अलका याग्निक और श्रीनिवास की आवाजों में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर आनंद लीजिएगा एक देशभक्ति गीत का, फिल्म स्वदेश से गायक ए.आर. रहमान के स्वर में। आज रात 8 बजे का वक्त रहेगा। आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार सिंध्या तथा रात्रि के 9 बजे सुनिए न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 14 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 बजे मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30 पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत कल आप पहले सुनेंगे गांधी स्मृति, तत्पश्चात गायक नरेंद्र चंचल की आवाज में

हिंदी भक्ति गीत। तीन बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे चंद वांगचो आधुनिक गीत, गायक वांगख्यप वांगसु के स्वर में। दोपहर 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुनेंगे एडवोकेट सोनम जंगमू, महिला कल्याण संघ तवंग की सदस्य से, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विषय पर जागरूकता। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म सिमरन से गुरु रंडवा और जोनिता गांधी, फिल्म दोस्ताना से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल दत्तलानी, फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह, फिल्म डियर जिंदगी से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी, फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन और फिल्म सिमरन से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी के स्वरों में चंद गीत। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुनेगा कार्यक्रम गीत मंजरी। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे फिल्म सत्यमेव जयते से आदिफ असलम, तुलसी कुमार, फिल्म टू स्टेट से अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा, फिल्म ये जवानी है दीवानी से बेनी दयाल और शेफाली अलवर्स, फिल्म बधाई दो से अरिजीत सिंह और रूपाली, फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी, फिल्म सूर्यवंशी से अरिजीत सिंह और नीति मोहन, फिल्म केसरी से अरिजीत सिंह और एसिस कौर, फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, फिल्म फैनी खान से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार, और फिल्म लव आजकल से अरिजीत सिंह के आवाजों में चंद नगमे। कल शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। इसके अंतर्गत कल आप सुनिए श्रीमती श्रीधेश्वरी देवी से ख्याल। कल शाम के 5:30 पर आप सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में श्री संगे टाशी से। शाम के 5:35 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम कुंसिल। कल शाम के 6:20 का वक्त रहेगा शहरों बस्ती के आमा रिंचिन संगमो और साथियों से गुंजक सुम्बा, कैप्ट्रो सिमकी, गंदन लगेमा, ड्रोमा, ग्यवै शब्दन, पोइतो, चंद्रसिक तोयपा और गोवा। कल शाम के 7:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित आप सुनेंगे 80वां स्वतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्र के नाम संदेश। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम के 7:45 पर तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम के 7:55 पर आने लीजिएगा एक देशभक्ति गीत का फिल्म उपकार से महेंद्र कपूर के स्वर में। कल रात के ठीक 8:00 सुनिएगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:30 पर स्पॉट स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9:00 न्यूज एट 9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम झरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है।

श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 6:20 पर मोनपा में कार्यक्रम। कृपया हमारे साथ बने रहें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में

0: बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में आंधी चलने की आशंका है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक समेत कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक हासिल किए। भारत ने पुरुष सेबर, महिला सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20th and saw a total of 19 sittings over 25 days.

0: आज की कविता इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल खिमितंग के 8वीं कक्षा की छात्र तिनसिन शिरप से अंग्रेजी में कविता। कविता का शीर्षक है द स्कूल बॉय।
1: Hello everyone, my name is Tindin Sharap. I read in class 8 at Government Upper Primary School Krimithang. Today I am going to recite a poem and the title of my poem is The Schoolboy by William Black. I love to rise in a summer morn when the bird sings on every tree. The descends a huntsman wind his horn and the skylark sings with me. Oh, what a sweet company. But to go to school in a summer morn, oh, it strives all joy away. Under a curial eye or one, the little ones spends the day in a shining and dismay. Ah, then at times I'm dropping a seat and spends a many an anxious hour. Nor in my book can I take delight, nor sits in the learning subover. Won't throw with the daily shower, how can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child when fares annoy but drops his tender wings and forget his youthful spring? Oh, father and mother, if birds are napped and brooms blown away, and if tender plants are stripped, oh, their joy is springing day by sorrow and care's dismay. How shall the summer arise in joy or summer fruits appear? Thank you.
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितंग के 8वीं कक्षा की छात्र तेंजिन शिरप से अंग्रेजी में एक कविता। कविता का शीर्षक था द स्कूल बॉय। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:11 हुए हैं। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम एक और अनेक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए गायक सुखविंदर सिंह और अन्य गायक कलाकारों द्वारा चंद नगमे। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म दिल से सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी के आवाजों में। गीत गुलजार के है व संगीत ए आर रहमान का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए, सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म ताल से। इस गीत के गीतकार हैं आनंद बख्शी तथा संगीतकार ए आर रहमान।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम एक और अनेक के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, अन्विता दत्त द्वारा शब्द रचना पर फिल्म 30 मार्क खान से सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के आवाजों में, और इस गीत को संगीत से सजाया है सुखविंदर सिंह ने।

0: श्रोताओं, हमारा अगला गीत सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म रईस से। सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और करसन सगातिया के स्वरों में जावेद अख्तर के रचे इस गीत को संगीत से सवारा है राम संपत ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सुल्तान से सुखविंदर सिंह और शदब फरीदी के आवाजों में। इर्शिद कमल के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सवारा है विशाल और शेखर ने।

0: श्रोताओ, अभी आपने आनंद लिया फिल्म संजू से यह गीत सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल के आवाजों में। शेखर अस्तित्व के लिखे इस गीत को संगीत दिया था विक्रम मंद्रोस ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम एक और अनेक अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा शाम के 7:50 पर
1: समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024-25 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक एवं जनजातीय कला, कठपुतली, पारंपरिक रंगमंच तथा अन्य संबद्ध कला क्षेत्रों में उत्कृष्ट और निरंतर योगदान को मान्यता देते हैं। अरुणाचल प्रदेश से डोमिन कारबक को स्वदेशी सांस्कृतिक विरासत तथा पारंपरिक कला रूपों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं रूमी तक को लोक रंगमंच और पारंपरिक लोक नृत्य के लिए उत्साह बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार प्रस्तुत किया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पोस्ट में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच का संबंध सीमाओं से कहीं आगे है। पीढ़ियों से दोनों राज्यों के लोग प्रेम और आपसी सम्मान के साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। उन्होंने कहा है कि हाल के

0: क्षेत्रों में दोनों राज्यों ने संवाद और मैत्रीपूर्ण भावना में सीमा से जुड़े अधिकांश मुद्दे को समाधान किया है। अब केवल 52 गांव हैं शेष, जो दोनों राज्यों की सरकारें इसी भावना के साथ बातचीत जारी रखते हुए सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाने का प्रयास करेंगी। इधर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि मतभेदों का समाधान हमेशा संवाद, आपसी समझ और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी से अपील की है कि मतभेदों को असम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत संबंधों पर हावी होने न दें। इस बीच बुधवार को अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्सों की ओर जाने वाले प्रवेश जांच द्वार पर होने वाले आवाजाही को रोक दी गई थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के अंतर्गत ग्रुप ए, बी और सी के सभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए एक समान पात्रता मानदंड लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके तहत आवेदकों के लिए 3 अनिवार्य शर्त तय की गई है, जिनमें स्थायी निवास यानी इंडिजिनस APST यानी राज्य की मूल निवासी एवं APST की पात्रता और इंडिजिनस ट्राइबल लैंग्वेज यानी स्थानीय जनजाति भाषा का ज्ञान शामिल है। कैबिनेट ने प्रिंसिपल और DDSC के पदों पर पदोन्नति के लिए एक बार के विशिष्ट छूट के तहत 2 वर्ष की सर्विस रिलैक्सेशन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर के पदोन्नति के लिए भी एक बार की छूट प्रदान का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सीनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट तथा DIPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में फील्ड पब्लिसिटी असिस्टेंट से संबंधित रिक्रूटमेंट रूल्स में संशोधन को भी मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में नोंगताओ में निर्माणाधीन महाबोधि कौशल विकास केंद्र के कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि विहार और 108 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की प्रतिमा आध्यात्मिक विकास तथा ताई खामती संस्कृति और विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। उन्होंने नामसा स्थित महाबोधि लॉर्ड बुद्ध कॉलेज में 100 बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्माणाधीन महाबोधि मंक्स हॉस्टल की प्रगति का भी समीक्षा की। पासीघाट उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में आज महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख कानूनों पर एक दिवसीय डिस्ट्रिक्ट लेवल अवेयरनेस कम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत डिप्टी डायरेक्टर ICDS कम प्रोटेक्शन ऑफिसर PWDVA द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने प्रतिभागियों से अपील की है कि वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियों को अपने कार्यालयों के साथ साथ स्थानीय समुदाय तक भी सक्रिय रूप से पहुंचाएं। जेम्स ऑफ इंडिया इनिशिएटिव को लेकर आज चांगलांग जिले में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक कार्यशाला आयोजित की गई। ये कार्यशाला डाइक चांगलांग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चांगलांग और रांगफ्रा कॉलेज चांगलांग में आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों को जेम्स ऑफ इंडिया इनिशिएटिव के बारे में जागरूक करना और उन्हें राष्ट्र स्तर के क्रिएटर्स चैलेंज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना था। वन अरुणाचल प्रदेश बटालियन NCCC द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ब्लड डोनेशन अवेयरनेस रैली आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम का अंतिम चरण RK मिशन हॉस्पिटल ईटानगर में आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के साथ संपन्न हुआ। और हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत आज देवमाली में भव्य तिरंगा रैली आयोजित की गई। रैली में जनता की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई। कार्यक्रम में एक विशेष बाईसाइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा विद्यार्थियों ने 150 मीटर लंबे राष्ट्र ध्वज को गर्व के साथ लेकर जनरल ग्राउंड से NCI ब्रिज तक तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय नारांग कोया। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has appealed to the people of Assam and Arunachal to maintain peace and harmony. In a social media post, CM Sharma said that both the states share a bond that goes far beyond boundaries. He further said that in recent years, both states have resolved most of the border differences through dialogue and friendship. Only 52 villages remain, and both governments will continue discussions in the same spirit to resolve the dispute completely, the Assam CM added. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu has welcomed the Assam CM's statement. He called upon everyone not to allow differences to overshadow the strong bonds that unite people of both Assam and Arunachal Pradesh. On Wednesday, vehicular movement at entry check gates from the eastern to the western parts of Arunachal Pradesh were stopped due to a blockade imposed by supporters of TMPK.

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजी श्रोताओं, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है गांधी चौक बरमेर राजस्थान से बबलेश पन।

डैनी पनवर, मनीष पनवर, रामदेव से दिनेश चौहान और खलीफों की बौरी से खुदा बख्श खलीफा। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म आप आए बाहर आए से यह गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के आवाजों में। आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने और इस गीत के बोल है तुमको भी तो ऐसा ही कुछ।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ के दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा के पसंद पर, फिल्म जीवन मृत्यु से यह गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के आवाजों में आनंद बख्शी द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस गीत के बोल है जिलमिल सितारों का आंगन होगा।

श्रोताओं, इस वक्त आप व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनी यह अगला गीत। तोरोवाल नवन शहर पंजाब से आप हैं गगनदीप तांडी, तृप्ता कुमारी तांडी, डॉक्टर प्रियंका तांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियम थांडी, बेबी वमिका और वानी थांडी और मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप है मुकेश केशव, शीतल केशव, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप सब की पसंद पर आई आनंद लेते हैं फिल्म दिल एक मंदिर से यह गीत, राजकमल द्वारा संगीत निर्देशन पर, शैलेंद्र के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं गायक गायिका लता मंगेशकर ने। इस गीत के बोल है रुक जा रात आशिक।

श्रोताओं, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है देर पटना गुजरात से आप है धीरज वी रबरी। आपकी पसंद पर आए सुनते हैं फिल्म वक्त से यह गीत गायक मोहम्मद रफी के आवाज में। नीदा फजली द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है उषा खन्ना ने और इस गीत के बोल है तू इस तरह से मेरे जिंदगी में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश प्राप्त हुई है लव पेगंग से पेमा टैशी, तेंजिन दवा नाका और तोंगची से। आपकी फरमाइश पर पेश है फिल्म नूरी से यह गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के स्वरों में। जान निसार अख्तार के लिखे बोल पर इसे संगीत दिया है कयाम ने। इस गीत के बोल है आजा रे ओ मेरे दिलबर।

एक कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स केंद्र, 8:45 पर समाचार सिंधिया तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुने न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया, जीते कुल 35 पदक। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सभी वर्गों के फाइनलिस्ट तय। महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना और इगा स्वायतेक होंगी आमने सामने। मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले बने बाएं हाथ के गेंदबाज। और लेह में पहला 24 घंटे खुलने वाला आइस हॉकी रिंक शुरू, शीतकाल

इन खेलों को मिलेगा बढ़ावा। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलवारबाजी से। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर भारतीय खेल इतिहास में एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक अध्याय लिख दिया है। सुनते हैं इस प्रतियोगिता पर एक खास रिपोर्ट।

भारतीय टीम ने तलवारबाजी के इस खेल में असाधारण कौशल दिखाते हुए प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी पर कब्जा किया, जो साल 1982 से टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश को दी जाती है। चार दिन चली इस बेहद रोमांचक और कड़ी प्रतियोगिता में भारतीय तलवारबाजों ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। भारत की इस ऐतिहासिक महाविजय की नींव खेल के हर स्तर और हर वर्ग में खिलाड़ियों के चौतरफा और निरंतर शानदार प्रदर्शन से रखी गई, जिसकी शुरुआत जूनियर अंडर 23 श्रेणी से हुई, जहां भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत

करने वाले देश को दी जाती है। चार दिन चली इस बेहद रोमांचक और कड़ी प्रतियोगिता में भारतीय तलवारबाजों ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। भारत की इस ऐतिहासिक महाविजय की नींव खेल के हर स्तर और हर वर्ग में खिलाड़ियों के चौतरफा और निरंतर शानदार प्रदर्शन से रखी गई, जिसकी शुरुआत जूनियर अंडर 23 श्रेणी से हुई, जहां भारत ने 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीतकर अपनी युवा शक्ति का परिचय दिया। इस विजय लय को सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बरकरार रखा गया, जिसमें भारतीय तलवारबाजों ने 4 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक अपने नाम किए। इन व्यक्तिगत मुकाबलों में तनिष्का खत्री ने सीनियर व्यक्तिगत एपी स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने फाइनल में खुशी दाभाड़े को 15-7 से हराया। इस स्पर्धा में प्राची लोहान ने कांस्य पदक जीतकर भारत का वर्चस्व बनाए रखा। वहीं महिला फॉयल स्पर्धा में वीपी कनागलक्ष्मी ने एक बेहद करीबी मुकाबले में भारत की ही जॉयस अशिता को 15-13 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ओलंपियन भवानी देवी के बाद सीनियर व्यक्तिगत राष्ट्रमंडल स्वर्ण जीतने वाली इतिहास की केवल दूसरी भारतीय महिला बनी। पुरुषों के व्यक्तिगत मुकाबलों में भी भारत का दबदबा साफ नजर आया, जहां सिंह करण सिंह ने सीनियर पुरुष सेबर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के शिम युनगी को मात देकर स्वर्ण पदक जीता। सीनियर पुरुष एपी फाइनल में राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन और युवा सनसनी निखिल वाघ ने अंडर 23 पुरुष सेबर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस ऐतिहासिक चैंपियनशिप का समापन चौथे और अंतिम दिन सीनियर टीम स्पर्धाओं से हुआ, जहां भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में से 5 में स्वर्ण पदक जीतकर क्लीन स्वीप किया। भारत ने पुरुष सेबर, पुरुष एपी, महिला एपी और महिला फॉयल स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, जबकि पुरुष फॉयल में रजत पदक अपने नाम किया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।

0: तो कह सकते हैं कि भारतीय टीम ने तलवारबाजी में भी असाधारण कौशल दिखाते हुए भारत का विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ाया है। और अब बात फुटबॉल पर। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के उप महासचिव एम सत्यनारायणन ने आज कहा कि भारत ने अक्टूबर में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के खिलाफ होने वाले हाई प्रोफाइल अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच को प्राथमिकता देते हुए पहले फीफा आसियान कप से नाम वापस ले लिया है। भारत ने शुरुआत में फीफा के इस नए टूर्नामेंट में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार किया था और बाद में उसे डिवीजन 1 के ग्रुप ए में इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया था। ये प्रतियोगिता 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। और अब बात स्क्वॉश पर। भारत की शीर्ष वरीय महिला खिलाड़ी तन्वी शर्मा और पुरुष खिलाड़ी सूरज कुमार चंद स्क्वॉश चैलेंजर टूर के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। तन्वी को सोहायला हजेम ने और सूरज को मोहम्मद गौहर ने हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: HCL स्क्वॉश PSA चैलेंजर टूर इवेंट के सेमीफाइनल में आज भारत को दोहरा झटका लगा। महिलाओं की टॉप सीड तन्वी खन्ना और पुरुषों की चौथी सीड सूरज कुमार चंद प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तन्वी को मिस्र की तीसरी सीड सोहायला हजेम ने 11-6, 2-11, 7-11, 7-11 से मात दी, जबकि सूरज चंद को मिस्र के टॉप सीड मोहम्मद गौहर ने 11-8, 11-2, 11-7 से हरा दिया। इससे पहले हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का सिंगल्स खिताब जीतने वाले सूरज चंद ने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए हमवतन 8वीं सीड ओम सेमवाल को 4 गेम में मात दी थी। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मिस्र के हसन मेनशावी को 11-4, 8-11, 11-2, 9-11, 11-8 से शिकस्त दी। 5 गेम का ये मुकाबला 73 मिनट तक चला था। एक अन्य रोमांचक मुकाबले में संदेश पलानीवेल रवि कुमार ने 0-2 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 6वीं सीड अयान वजीर अली को 6-11, 10-12, 11-5, 11-6, 11-7 से हराया और पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। महिला वर्ग में टॉप सीड तन्वी खन्ना ने वसुंधरा नंगारे को सीधे गेम में हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जहां हमवतन 6वीं सीड निरुपमा दुबे को सीधे गेम में हराया, लेकिन सेमीफाइनल में मिस्र की तीसरी सीड सोहायला के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। फाइनल मैच मिस्र के खिलाड़ियों के बीच होगा, जिसमें सोहायला महिला खिताब जीतने के लिए दूसरी वरीयता प्राप्त मीना वालिद से भिड़ेंगी, जबकि गौहर पुरुष खिताब के लिए तीसरी वरीयता प्राप्त सेफ रेफे से मुकाबला करेंगे। इस इवेंट में पुरुषों और महिलाओं के वर्ग के लिए $9,000 की समान इनामी राशि रखी गई है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।

0: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के अलग अलग वर्गों के फाइनलिस्ट तय हो गए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशेष अलग अलग स्पर्धाओं में आज मुकाबले खेले गए और विशेष कौन कौन से ऐसे जो डिवीजन है जिसमें आज रोमांचक मुकाबले देखने को मिले।
1: जी प्रशांत, अगर आज हम बात करें महिला सिंगल्स के मुकाबलों की तो वहां कोको गॉफ और एलिना रायबकीना के बीच मुकाबला खेला गया, जहां रायबकीना ने 5-7, 6-2, 6-2 से जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बनाई। और वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो स्वितोलिना और स्वायतेक के बीच खेला गया, जिसमें स्वायतेक ने 6-3, 1-6 और 6-3 के साथ इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में प्रवेश किया। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो लर्नर तियन और बेन शेल्टन के बीच मुकाबला खेला गया पहला सेमीफाइनल, जहां बेन शेल्टन ने एक तरफा मुकाबले में लर्नर तियन को हराया 6-2 और 6-3 से। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नाकाशिमा ने राफेल जोडार को हराया 7-6 और 6-4 से।
0: जैसा कि आपने बताया कि एलिना रिबाकिना और इगा स्वायतेक ने फाइनल में जगह बनाई, तो आज सेमीफाइनल का मुकाबला महिला डिपार्टमेंट में कैसा रहा उनका आज?
1: जी अगर उनके महिला मुकाबलों की बात करें तो सेमीफाइनल मुकाबला जो है बहुत ही रोमांचक खेला गया था
0: जी।
1: लेकिन अब जो फाइनल कल खेला जाना है स्वायतेक और रायबकीना के बीच
0: जी,
1: तो अगर वहां रिकॉर्ड्स की बात करें तो स्वायतेक अभी नंबर वन खिलाड़ी हैं, जो 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, जिसमें 4 फ्रेंच ओपन, 1 यूएस ओपन और 1 विंबलडन भी शामिल है। वहीं अगर रायबकीना की बात करें तो उन्होंने इस साल काफी प्रभावित किया है 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर। इससे पहले वो 2022 में विंबलडन जीत चुकी हैं और 2-3 1000 एटीपी टूर के टूर्नामेंट में भी अपने जो है परचम लहरा चुकी हैं।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि महिला सिंगल्स का जो ये जो मुकाबला था एलिना रिबाकिना और इगा स्वायतेक का, वो 2 घंटे 50 मिनट तक खेला गया था और इसके बाद फाइनलिस्ट तय हुआ। और विशेष पुरुष वर्ग में भी आज कई मुकाबले खेले गए, फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं इस टूर्नामेंट के, तो कैसा रहा उनका प्रदर्शन?
1: जी आज शेल्टन और नकाशिमा का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा और उन्होंने फाइनल में जगह बनाई है। अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, क्योंकि इनका भी मुकाबला कल ही खेला जाना है, तो शेल्टन जो है वो अमेरिकन, अगर उनकी बात करें तो वो सेकंड वरीयता प्राप्त हैं और वहीं वो 6 सिंगल एटीपी टूर टाइटल जीत चुके हैं और 2025 के वो कैनेडियन ओपन विनर भी रह चुके हैं
0: जी।
1: और वहीं नकाशिमा की बात करें तो वो अभी इतना अनुभव उनके पास नहीं है, 2022 में उन्होंने 1 एटीपी सिंगल्स टूर जीता था और उसके बाद अभी हाल ही में हुए नेशनल बैंक ओपन फाइनल में उन्होंने जगह बनाई थी।
0: और इस प्रतियोगिता में डबल्स के भी मुकाबले खेले गए, मेंस डबल्स और वुमेन्स डबल्स में कैसा रहा प्रदर्शन आज?
1: देखिए मेंस डबल्स में प्रदर्शन जो है काफी शानदार रहा। अगर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो ब्राजील के राफेल मेटोज और ओरियानो लूस की जोड़ी का मुकाबला क्रोएशिया के मेट पाविक और सेल्वाडोर के मोरेडो अरेवेलो से होगा
0: जी।
1: और अगर महिला सिंगल्स में देखें तो चेकिया की कैटरीना सिनियोकोवा और चीन की झांग शुआई की जोड़ी इटली की साराफ ईरानी और अमेरिका की निकोल मार्टिनेज के साथ मुकाबला करेगी।
0: अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन से खिलाड़ी कनाडा ओपन का खिताब जीतते हैं। लद्दाख में शीतकालीन खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज कृत्रिम आइस हॉकी रिंक का उद्घाटन किया। करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से तैयार अत्याधुनिक रिंक में 24 घंटे की सुविधा उपलब्ध है। सुनते हैं लेह से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: गवर्नर ऑफ लद्दाख विनय कुमार सक्सेना टुडे इनॉग्रेटेड द यूनियन टेरिटरीज फर्स्ट इंटरनेशनल लेवल आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंक एट एनडीएस स्टेडियम इन ले। बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ अराउंड 42 करोड़ रुपीज, द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हैज अ 24-आवर चिलिंग सिस्टम अलोइंग प्लेयर्स टू ट्रेन थ्रू आउट द ईयर बियॉन्ड लद्दाख's शॉर्ट नेचुरल आइस सीजन। द लेफ्टिनेंट गवर्नर सेड द रिंक विल हेल्प यंग प्लेयर्स prepare systematically for national and international competitions.
3: लद्दाख में आइस हॉकी रिंग का इनॉग्रेशन हुआ है और ये ऐतिहासिक दिन है लद्दाख के स्पोर्ट्स के सिलसिले में। हम सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे प्रोग्राम्स को बहुत बढ़ावा देते हैं और लद्दाख में जो बच्चे हैं उनको आइस हॉकी का बहुत शौक भी है और इस रिंग के बन जाने से अब हमारे जो लद्दाख के बच्चे हैं वो 24/7 12 महीने यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैचेस खेल सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर जल्दी एक बहुत बड़ा इवेंट किया जाए जिसमें नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी आए और हमारे बच्चों को एक्सपोजर दें कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लेकर आए।
2: दिस फैसिलिटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बूस्ट सपोर्ट्स टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमी। फॉर सपोर्ट्स कैन, दिस इज खुर्शीद यूसुफ फ्रॉम लेह लद्दाख।

0: और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला मुकाबला डार्विन के मरारा क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। पहला दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 198 रन पर सिमट गई। दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 71 रन बनाए। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने धारदार गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 6 विकेट अपने नाम किए। बांग्लादेश ने पहली पारी में दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। हालांकि इस समय मुकाबले में बांग्लादेश की स्थिति मजबूत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कई अनुभवी गेंदबाज हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एकमात्र विकेट मिचेल स्टार्क ने लिया। स्टार्क ने इस विकेट के साथ ही इतिहास रच दिया। स्टार्क टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज बन गए। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: स्टार्क ने शादमान इस्लाम को पवेलियन भेजते ही एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने सबसे अधिक विकेट लेने के मामले में श्रीलंका के पूर्व गेंदबाज रंगना हेरात को पीछे छोड़ दिया है। स्टार्क के नाम अब टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट हो गए हैं। वहीं हेरात ने अपने टेस्ट करियर के दौरान 433 विकेट लिए थे। स्टार्क वसीम अकरम को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं, जिन्होंने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 414 विकेट चटकाए थे। टेस्ट का पहला दिन पूरी तरह से बांग्लादेश देश के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस का टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला गलत साबित हुआ और पहली पारी में टीम सिर्फ 198 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ट्रेविस हेड महज 22 रन बना सके, जबकि जैक विदराल्ड 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मार्नस लाबुशेन सिर्फ एक ही रन बना सके। कैमरून ग्रीन का बल्ला भी खामोश रहा और वे 13 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स कैरी ने 19 और ब्यू वेबस्टर ने 12 रन बनाए। कप्तान पैट कमिंस 9 रन बनाकर हसन महमूद का शिकार बने। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 रन देकर 6 विकेट चटकाए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: विशेष श्रीलंका से भी भारत का मैच होना है 15 तारीख से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। भारत कहां भी लाइक कर रहा है?
2: देखिए प्रशांत, अभी भारत की जो स्थिति है काफी नाजुक है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। अभी पांचवें स्थान पर है 48% के साथ, और अगर उनको WTC फाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो 7 मुकाबले जीतने होंगे या फिर 6 मुकाबले जीतने होंगे और 2 ड्रॉ कराने होंगे। अगर अपनी जगह बिल्कुल सुनिश्चित करनी है, दूसरे की जीत पर नहीं रिलाई करना है, तो 8 मुकाबले जीतकर 68% अंक हासिल करने होंगे।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में पहले स्थान पर है। और श्रोताओं, समय और आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

0: संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला

0: निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
2: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से

0: भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मानसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।